0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-15

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आ डोगरे दी धी नेहा तुंदे सारे आस्ते लेई आई आ डोगरे रेडियो ते अस गल करा दे डोगरी लैंग्वेज दी, डोगरी भाषा दी। जियां कि मैं तुसें दसा दी ही कि टाकरी लिपि दा निकली ही, पर जियां कि अज जम्मू दे बिच भी बहुत लोग हन जो अपनी भाषा की नहीं बोलदे, पर मैं मन्नी आ कि जेड़ी डोगरी भाषा है वो साड़ी माँ है, ते हिंदी है वो साड़ी दादी है, ते माऊ थार माँ होनी चाहिए है, ते दादी थारे दादी होनी चाहिए है। पर फिर भी कुछ लोग हैं जो बड़े चिकते हैं, शर्मांदे ने, ते कई ते वो भी कैटेगरी है लोगों की जो आखते हैं अगर डोगरी बोल के तो ग्राही सही हो गए। ठीक है, मैं समझनी हर भाषा का ज्ञान होना बड़ा ही जरूरी है, एक पर्सनल डिवलपमेंट आस्ते हर भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, पर अपनी जड़ें ही भुलाना कि समझदारी है, अपनी जड़ें अपनी पुरानी जी जितों आए हैं जो साड़ी ओरिजिनल भाषा है वह भुलाना भी कोई समझदारी तो नहीं है, वह भी असं ज्ञान होना चाहिए उसका भी, तो असं अपने बच्चे की भी वह सिखानी चाहिए है। तो सुनो अगला गीत, तो मैं करनी फिर अगली बार वो बाद।

मता मता स्वागत है तुंदा डोगरी रेडियो च। मैं आज दी आरजे तुंदी डोगरी रेडियो दी नेहा। ते मैं जियां तुसीं दस्या कि टाकरी लिपि दा निकली दी है, पर बड़े सारे लोग न जिन्हें कि टाकरी दा ज्ञान गे नहीं रहा है, विलुप्त होई है, जियां कि साड़ी भाषा विलुप्त होआ करदी है। ते अजकल सधारण तौर पर इसी देवनागरी लिपि च लिखिया जांदा है। ते ये जिहड़ी है इहदा सॉलिड बेस है इस भाषा दा, वो संस्कृत बेस्ड है। आई भी कई वर्ड हैं जो सिमिलर हैं संस्कृत दे ते डोगरी दे, या ते मीनिंग सेम होई जांदा हुंदा या फिर वो फोनेटिक थोड़ा जिहा चेंज होई जांदे ने। जियां कि संस्कृत दा वर्ड तुस लाओ यात्रा, जो कि डोगरी च आखा जांदा है यात्रा। अगर संस्कृत दा वर्ड तुस चुको हसा, ते ये डोगरी च होई जांदा है आसा। ते डोगरी भाषा सिर्फ डुग्गर प्रदेश च ही नहीं बोली जांदी है, ये पंजाब के कुछ इलाके च भी बोली जांदी है, जियां कि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, उआं गे ही हिमाचल प्रदेश च भी बोली जांदी है। डोगरी भाषा ते हिमाचली भाषा बहुत ही सिमिलर है, पर हिमाचल दे आए भी कई जगह न जिहदे च प्योर डोगरी बोली जांदी है। ते डोगरी भाषा एक इकली भाषा नहीं है जो जम्मू प्रदेश च बोली जाती है, ये कन्ने और भी बड़ी पहाड़ी भाषा जो बोली जाती हैं। तो सुनो अगला गीत, ते फिर मैं सुनानी हूँ तुसें बाकी भाषाएं के बारे में।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, अस गल करा दे डोगरी भाषा दी। ते जियां कि संस्कृत बेस होंदा है बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस दा, उआं गै डोगरी भी बेस है बहुत सारी और पहाड़ी भाषाएं दा। डुग्गर प्रदेश च और भी बड़ी सारी पहाड़ी भाषा बोली जांदियां ने डोगरी दे अलावा, जियां कि कांगड़ी, सिरमुरी, रामबनी, भद्रवाही, गोजरी, पोंगली, ये नहीं और बड़ी पहाड़ी भाषा जो इस प्रदेश च बोली जांदियां ने। ते मैं ये रिक्वेस्ट करनी है श्रोता गणे कि जो जो भी सुना दे वो जेड़ी भी उन्दी अपनी मातृभाषा है, जो भी उन्दी जड़ां ने, अपने आने वाली पीढ़ी की उन्दे कोला अवगत कराना बहुत जरूरी है, ताकि जियां तुस नहीं भुले अब तुंदी पीढ़ी भी अपनी जड़ें की नहीं भुले, ते उन्हें अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ते उम्मीद ही इजाजत, मैं फिर परती आगे जांदे आस्ते एक नवी कहानी लईए, एक नवा ज्ञान लईए मेरे डुग्गर प्रदेश का।

0: इस साल तो इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी। घर ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्तां ने सारा बजट हिलाता।
1: ओ जी, अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदिया कोई फिकर नहीं। ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज।
0: होम, ऑटो, कमर्शियल ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानू एट 416-618-2761 416-618-2761।
2: नाले चोपड़िया नाले दो दो।
3: आहो जी, मेनू भी पता, नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना, यानी दाना मंडी। दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी, डाला, मसाले, पिकल्स, चौल, चाह पत्ती, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
4: डेयरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फ्रेश चिकन, बीफ, गोट मीट, सब कुछ मिलूगा। इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे, चना भटूरा, वेज थाली, वेज बिरयानी, बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो।
3: एक बार आओगे ते बार बार आओगे।
4: अनबीटेबल प्राइसेस, सेल ऑल टाइम। दाना मंडी, 1729 क्वीन स्ट्रीट, ईस्ट ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन क्वीन एंड ब्रैमले।
3: कॉल गगन और गुरिंदर एट 905-286-9257।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this.
6: पर हुन थोनू कार लैन ली रेडी करनगे मॉर्गेज द किंग गिरीश शर्मा।
7: रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस, प्राइवेट फंड्स,
6: सब ले याद रखो गिरीश शर्मा। प्री अप्रूवल ही नहीं, क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ। डीलिंग विद ऑल बैंक।
7: कॉल 647-606-8110
6: और विजिट sharmamortgages.com।
8: शादी दी मूवी बनवाउन लई या रिंग सेरेमनी लई, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन लई, याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नू 416-930-1251 416-930-1251।
9: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ, ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
10: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ। 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ।
8: ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
11: 416-717-2929
8: 416-717-2929। ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਯੂਨਿਟ 4, ਇਟੋਬੀਕੋ।

0: जब आसस वासस हैबिसस नादित होसे बीसस बोले सोने हाल सस्याकाल।
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है। शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है। वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल। सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763 Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 90545-12600.
1: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज,
6: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।
7: 6 फुट 2 इंच लंबा।

डिजिटल एएम फ्रिक्वेंसी रही। टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो और आप सबका हार्दिक स्वागत कर दें। www.am530.ca या रेडियो वास्ट toronto.com देते दुनिया के किसी भी कोने जाके तुसी इंटरनेट की मदद नाल सानू सुन सकते हो। अपने जो सैलफोन च नंबर सेव है मेरा 416-518-3200 416-518-3200 तुसी साडे नाल गलबात कर सकते हो। और प्रोग्राम का आगाज हमेशा उस परमपरक परमेश्वर के नाम ओट आसना जिसके नाम ओट आसना आगाज दुनिया की हर शायद उम्मीद दिन खुशगवार चढ़ती कला वाला निरभउ निरवैर रहेगा मुस्कुराहट चिर का पाठ रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसी चलते रहोगे।

0: ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਹੌਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਲਸਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਲਸਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਡੈਲੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫਨ ਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੈਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇ ਬੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਔਫਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ?
1: ਤੋ
0: ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਬ ਤੱਕ ਐਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਲਿਸਨਰ ਸੁਣ ਰਹੇ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹਮਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਮੇ। एजुकेशन फंडिंग में हम डील करते हैं, गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स में ही हम डील करते हैं, मतलब आपको फीस पे नहीं करनी, गवर्नमेंट फीस पे करती इन प्रोग्राम्स की, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, उल्टा आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, बैंक के पैसे आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पढ़ते लिखते हुए आपको फंडिंग आपके खाते में देती है। 30,000 से 100,000 की फंडिंग होती है डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज। इसमें लाइक कोई एज लिमिट नहीं है, आप चाहे पेंशन पे है 75 के हैं, आप चाहे 40 ईयर्स के हैं, सेक्शन दो लोगों को ज्यादा फायदा है। लाइक अगर आप पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपकी इनकम $70,000 से कम है, नोटिस ऑफ असेसमेंट 2024 अभी देखा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप हमें कॉल करें, ऑफिस आए, असेसमेंट कराएं, फंडिंग को मिस ना करें। ऑलरेडी आपके सारे आस पड़ोस वाले ले चुके हैं, आप पीछे ना रहें, आप अपना नुकसान ना कराएं। 30,000 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें। गवर्नमेंट की पॉलिसी एक हफ्ते बाद, इस हफ्ते के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज है, ग्रांट नहीं आएगी, लोन आएगा। फंडिंग के दो पार्ट तक ग्रांट और लोन, ग्रांट गवर्नमेंट बंद कर रही है
0: जी। ते बिल्कुल जी, ग्रांट कहते बंद हो रही है, ते सिर्फ लोन ही मिलना है हुण उस तो बाद। ते किन्नी केड़ी डेट दसी तुसी सराश?
1: हाँ जी, तो लाइक 1 अगस्त के बाद जब नेक्स्ट एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो का, तो उसमें गवर्नमेंट ने ग्रांट बंद कर देनी है। और अब ऐसा भी नहीं आप 1 अगस्त को आएंगे, क्यों? क्योंकि 22 जुलाई को लास्ट बैच है कॉलेज का और 18 जुलाई के आसपास रजिस्ट्रेशन क्लोज है इस बैच की। तो इसमें आप एनरोल करेंगे तो आपको ग्रांट आएगी। कैसे ग्रांट आएगी? अगर आप मान के चले, पहले तो लाइक फंडिंग का नाम सुनकर हमें लगता है डर कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम भाई वो वाली फंडिंग में डील ही नहीं करते जहाँ पे कागज हिलते हैं, कमीशन ली जाती है। हम बड़े साफ काम साफ तरीके से 8 सालों से कर रहे हैं, बहुतों को हेल्प कर चुके हैं, कोई इसमें हिडन चीज नहीं है। अब इसमें मान के चले फैमिली ऑफ फोर है तो अप टू 80,000 की फंडिंग आती है। आज की डेट में 40,000 ग्रांट है, 40,000 लोन है जो कि 0% पे है, और 1.5 साल बाद 2.5% साल का ब्याज है, ओपन लोन है, मत लीजिए, ऑप्शनल है, ग्रांट ले लीजिए। लेकिन अगर आप हफ्ते बाद एनरोल करेंगे तो 80,000 ही आएगा फैमिली ऑफ फोर को, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं तो, लेकिन सारा लोन होएगा। तो देयर इज नो ना लोन तो हम पे वैसे इतना है, तो आप कब क्या करेंगे एनरोल करके? तो अभी एनरोल करें, अभी एक्शन लें। कोई एज लिमिट नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऊबर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर है, डिलीवरी ड्राइवर है, अच्छा बेनिफिट है आपको, आपके खाते में डायरेक्ट पैसे आते, तो ये नहीं मेरे खाते में आते भाई साहब, कोई कैच नहीं है, टिम होटल में नहीं मिलते, 1,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, ऑफिस है 7 से 8 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो कॉल कर रहे हैं, ऑफिस आए, असेसमेंट कराए।
0: जी जी बिल्कुल। और इसमें मैक्सिमम एज कितनी है? क्योंकि ना मेरे को कल भी कॉल आई किसी की, वो कहते मैं करना तो चाहता हूँ कोर्स, कहते पता नहीं अब मेरे को तो लगता है मेरी एज बहुत होगी है तो नहीं मैं इसमें एनरोल हो सकता। तो उनकी एज बता रहे थे वो 66, तो इसमें मैक्सिमम एज कितनी है?
1: कनाडा में चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम नाम की कोई चीज है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज का एज के हिसाब से। हमारे क्लाइंट 75 ईयर्स के भी है, ऑफिस आए 300 क्लाइंट हमारे सीनियर सिटीजन है, तो आप आए उनकी फाइलें देखें, सबकी फंडिंग अप्रूव हो चुकी है। अब आप मान के चले लास्ट वीक 28 बंदों की फंडिंग अप्रूव हुई है जिन्होंने मई बैच में ज्वाइन करा था या जून में ज्वाइन करा था। 30 से 90 डेज में आपके खाते में फंडिंग आती है, हमारे में नहीं आती। और लाइक इसमें ना कुछ हिडन नहीं है, आसान से कोर्सेज हैं, फुली ऑनलाइन है। अब जो सीनियर सिटीजन है वो ताश खेलने जाते हैं, कहते सर ताश खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, 2-3 घंटे फुली ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, फंडिंग भी आ गई, स्किल भी सीख ली, और क्या चाहिए। मैनेजमेंट के कोर्स करें, 2 से 3 घंटे ऑनलाइन रहे, फोन पे तुम पूरे दिन लगे रहते हैं, तो पैसे मिल रहे तो और इंटरेस्टिंग लगे रहेंगे नहीं। और बाकी अटेंडेंस मैंडेटरी है, 75% होनी चाहिए, एग्जामिनेशन नहीं है, असाइनमेंट्स है, आसान सी। बाकी हमारा ऑफिस खुला है, कुछ भी दिक्कत हो तो ऑफिस आप आ सकते हैं।
0: अच्छा, जैसे सरांश अब आप कह रहे हो कि ग्रांट अवेलेबल है और लोन भी, ग्रांट प्लस लोन है ना, फिर उसके बाद सिर्फ लोन ही मिलेगा, तो कितना फर्क पड़ जाएगा जो अब इस चीज का फायदा नहीं उठा रहे और जब वो एनरोल होंगे तो उनको कितना घाटा आप बता सकते हैं?
1: हाँ जी, अगर आप फैमिली ऑफ टू है, मान के चलिए यंग कपल या रिटायर्ड कपल है, उनको आज की रेट में 45,000 की फंडिंग मिलती है, जिसमें से $25,000 तो ग्रांट है जो वापिस ही नहीं करना उन्होंने। अब यही अगर मेरे पास आते हैं 1 हफ्ते के बाद, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही, मेरे घर की पॉलिसी तो है नहीं, तो ये नहीं मैं पुश कर रहा हूँ आपको, सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट दे रही है तो दे रही है, नहीं दे रही तो नहीं दे रही। आज ग्रांट दे रही है गवर्नमेंट, 1 हफ्ते बाद एनरोल करेंगे 45,000 का, 45,000 लोन आएगा। तो इसलिए मीठी बातें भी करते थे, कोई कैच नहीं है, कुछ हिडन नहीं है। आखिरी में आपके खाते में जब फंडिंग आ जाती है तो हमारी छोटी सी चीज है, $199 या $499, नॉट डिपेंडिंग ऑन योर फंडिंग, वन टाइम फीस छोटी सी क्यों है, लाइक डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, कुछ कोर्स इजी है, कुछ बहुत इजी जिसमें टीचर ही नहीं है वो बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे आप, उसमें खुद ही सेल्फ स्टडी मॉडल होता है, इसलिए छोटी सी फीस है 199, 499, शुरू में कुछ नहीं देना, आपके पास मुझे फंडिंग आती है, जैसे लास्ट वीक 28 बंदों की फंडिंग गिरी है खाते में, तब हमारी छोटी सी फीस आपने देनी है, गवर्नमेंट जब इतना पैसा यूक्रेन मोजाम्बिक्यू हेती को दे रही है बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप पे लगा रही, तो आपको लगता है कुछ हिडन होगा, कुछ हिडन नहीं है, कोई
0: गारंटी नहीं है। मान लो अब मिल रही 45,000, तो इसमें 25,000 तो ग्रांट है, तो बाद में जब ये ग्रांट आप कह रहे हैं बंद हो रही है बस अगस्त से, तो 45,000 ही मिलेगा एज ए लोन के उसमें 20,000 रह जाएगा?
1: 45,000 नहीं लोन, ग्रांट बंद हो जाएगी।
0: अच्छा ठीक है, मिलेगा इतना ही पर वो सारा लोन होगा।
1: बिल्कुल जी, अब पांच आम आपको मिल रहे हैं तो दो आपके हैं, तीन लोन के हैं, अब बाकी पूरे के पांच पांच आम ही लोन के हैं, एक हफ्ते के बाद एनरोल करेंगे, तो फायदा नहीं है आपको इतना। आज की डेट में खासकर जो रिटायर्ड कपल है, यंग कपल है, जिनमें किड्स नहीं है, उनको अभी एनरोल करना चाहिए किसी भी हालत में। और बाकी जो फैमिली विद किड्स है, तीन बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, उनको तो थ्री किड्स वालों को जिनके तीन बच्चे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, वो भी डिपेंडेंट ही काउंट होते हैं आज की डेट में, जो मैं बात कर रहा हूँ एक हफ्ते तक पहले, जैसे वन वीक तक पहले टाइम आते
0: हैं,
1: तो फैमिली ऑफ फाइव को 100,000 की फंडिंग आती है, 50,000 ग्रांट है, 50,000 लोन है, लोन ऑप्शनल है, गारंटी ले लीजिए क्योंकि टैक्स फ्री है, नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं करना होता, ग्रांट का मीनिंग होता है वापस नहीं करना आपने ये, है ना। तो आपकी इनकम अगर कम है, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, ओंटारियो में कहीं भी किसी भी सिटी में रहते हैं, तो गवर्नमेंट आप पे आज इन्वेस्ट कर रही है, एक हफ्ते बाद पॉलिसी चेंज हो रही है, पीछे ना रहे, कॉल करें ऑफिस है, नंबर नोट करें आप हमारा, 437-234-31-75, 437-234-31-75, उन्हें तुसी कॉल कर सकते हो, ऑफिस आ सकते हो, एस्टीमेट ले सकते हो, 437-234-31-75, 437-264-3175, तुसी कॉल करो, ऑफिस आओ, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हर एंटर डेरी पे, पहले कॉल करें, क्विक असेसमेंट करा लें, आपको बेनिफिट हम बता देंगे कितना हो रहा है, कितनी ग्रांट बन रही, कितनी लोन बन रहा है, देन ऑफिस आए, क्विकली एनरोल करें, 437-234-31-75, 437-234-31-75, 437-264-3175।
0: जी सरांश, थैंक यू वेरी मच, ते मैं भी एक बार नंबर दे देनी हूं, तुसी नंबर नोट कर लो, ते सरांश नूं तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर हैगा 437-234-3175, 437-264-3175 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਲੱਸ ਲੋਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਲੋਨ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਲੋਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਪੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
2: ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੈਸੀ ਹੈ ਬਹਿਣ ਜੀ ਆਪ?
0: ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸੁਣਾਏ?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मंडे मॉर्निंग प्रोग्राम से आगाज आपका, बड़ा बढ़िया प्रोग्राम। वो आप बता रही थी वो अपने टोरंटो में जो फेस्टिवल में अटैक हुआ वगैरह सेंट क्लियर पे, अब इसमें देखिए लोग जो है पुलिस बहुत सख्ती कर देगी, क्योंकि जहां पे भी गैदरिंग हो रही वहां बैरिकेड ज्यादा अच्छे लगाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं किसके जो भी वहां बंदे आते हैं वो कौन से लोग हैं, किस गैंग से ताल्लुक है, क्या है नहीं पता, वो उनके दुश्मनों को पता चलता है ये बंदा फुला वक्त पे यहाँ है, वो आके अचानक अटैक करते हैं, उसमें पब्लिक का क्या ताल्लुक है भाई। आप और हम तो ऐसे ही चले गए एंजॉय करने के लिए, जैसा आप बताए म्यूजिक का आनंद ले रहे थे, वहां आनंद लेने गए तो ये आनंद फानन काम कर दिए आपका, तो ऐसा तो नहीं होता ना। अभी देखिए पिछले साल ही आपके लिपो लिपो करके फिलिपिन डेड होता है, बड़ा मशहूर है वो मॉन्ट्रियल में, मैं तकरीबन 20 साल से देख रहा हूँ वो, तो वो उसमें भी देखिए बंदा गाड़ी लाके चढ़ा दिया सब पे, तो ये सोचना चाहिए। अच्छा फिर दूसरी बात, जितने भी ये टोरंटो में बाइक लेन्स है, जहां पे भी बाइक लेन्स है इनको हटाना चाहिए। उसकी वजह ये है बाइक के बहाने क्या हो रहा है, आपकी रोड जो है वो नैरो हो जाती, छोटी हो जाती, अब वो जहां से दो गड्डियां या तीन गड्डियां जाना है वहां से अब एक ही गड्डी जा रही है, एक तरफ बाइक लेन है दूसरी तरफ बीच में एक पार्किंग बना दी है, एक अजीब पागलपन दिखता पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ये। और ये जो भी शुरू करा ये पहले रेफरेंडम या

0: भी आजकल परमिशन भी देने का लोग सोच रहे हैं। अब ये देखिए, अभी टोरंटो में एलजीबीटी का निकला था, उसके लिए भी बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन वो समझिए आराम से सारी चीजें हो गए और उसमें सुरक्षा भी थी, सब कुछ थी। तो कहने का मकसद ये है कि इन चीजों पे तवज्जो दीजिए, वरना आने वाले टाइम में बड़ा मुश्किल होने वाला है कि आप अपने कहीं जा नहीं सकते, कोई गैदरिंग नहीं होगी, कोई फेस्टिवल की वगैरह। तो बड़ी दुख की बात है और वो बंदे पकड़े जाएंगे, कहीं भी बच के जाने सकते, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बचपन से सुन रहे हैं हम। और आखिरी में सारी बातों पे यही कहूंगा कि गर्मी शौक भी है, गर्मी मौसम भी है, गर्मी शौक भी है, गर्मी मौसम भी है, और फिर इस पे मेरा सोजे जिगर क्या कहना।
1: वाह क्या बात है, थैंक यू सर,
0: शुक्रिया जी, सत श्री अकाल जी, सारों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल बीबी,
1: सत श्री अकाल जी, बिल्कुल थैंक यू। ते बड़ा वधिया जी इन्हां दा मैसेज भी आपां कह सकदे आं वी, देख लो किद्दां दा सारा जिहड़ा हालात है वो चल रहे हैं। ते सीएन टावर दीआं जिहड़ियां लाइट्स आ वो भी डिम कीतीआं गईआं ट्रिब्यूट दे लई, जिहड़ी इह डेडली शूटिंग हुई है टोरंटो स्ट्रीट फेस्टिवल ते। सो वैसे तां उही है कि देखो जिहड़े भी कोई भी फंक्शन किते करवाउंदा है ना, ते किन्ना मेहनत लगती, किन्ना समा लगता, ते फिर ऐदा दे लोग आके रंग दे विच भंग पा देंदे आ। ते जेड़े हुण उत्थे देखो इंजॉय करन आए सी उन्हां दे विचों ही मौत होई ना, जिन्हां दी होई आ, ते उन्हां नूं की पता सीगा वी असीं तां जाणा फंक्शन वास्ते ते उत्थे साडी जान ही चली जाणी आ। सो पुलिस कहिंदे उत्थे इन्नी तादाद दे विच फिर हो गई जिहदा अंत हिसाब नहीं। सो देखो पुलिस वालियां नूं भी किन्ना औखा हो जांदा, तां ही तां कहिंदे आ कि इत्थे जिहड़े नियम है ना स्ट्रिक्टनेस उहनां च बहुत आउणी चाहीदी है। किन्ना कुछ करदे आ उह किसी भी इनवैसटीगेशन दे लई या फड़न वास्ते, कई बार उन्हां नूं फिर बेल ते जदों छड्ड दिंदे आ उह ही है पिछे जिहा, जिवें मैं पहलां वी गल कीती आ कि फिर पुलिस वालियां दा ही मगर पै जांदे आ पिछे। देखो फिर तीन चार जिहड़े पुलिस वाले साडे पुलिस ऑफिसर्स उहनां दी जान चली गई है ना वख वख घटनावां दे विच। सो जे हुण स्ट्रिक्ट कानून के हाँ बंदे ने गलती की फड़िया उहनूं, उह तों बाद सज़ा इन्नी सख्त होवे ते बाकी कोई कुछ भी ना करे, फिर सारे डरदे रहन। हुण जिहदा जिहनूं दिल करदा है ना, ते आ इत्थे चिंगूजी पार्क च जदों होणा सीगा उदों देखो की होया सीगा, उदों उह पटाके बंब उह गड्डी ते चलाउंदे फिरदे सी, सारे डर गए वी की हो गया, उह वी रंग दे विच भंग पिया। सो पता नहीं क्यों जिहड़े इदां दीआं हरकतां जिहड़ियां करदे आ लोक, ते कौण इहनां दे पिछे हैगा जिहड़ा की करवा रिहा, ये भी बड़ी सोचण वाली गल है। चलो देर सवेर नाम तो उन्होंने सामने आ ही जाते हैं, पर हेट क्राइम है ना जिहड़ा ये भी बहुत वध गया हुण तां ना। वैसे भी तुसीं जिवें बाहर चाहे किसी प्लाजे च घूम रहे हो, किते भी हो, या रोड ते जा रहे हो, या वॉक कर रहे हो किसी पार्क दे विच, तां पता नहीं लगता भी कित्थे की हो जूगा। सो जिहड़े इह हेट क्राइम दे मामले भी बड़े वध गए आ, जिहड़े चाहे साउथ एशियन कम्यूनिटी है इहनां दे अगे आके खड़े हो जांदे आ, बोलण लग जांदे आ, पिछे जिहा वी इक बजुर्ग सीगे उहनां नाल इदां होया सी, उह धक्का मुक्का जी करन लग गए है ना। हुण तां इदां ही लगदा वी पता नहीं जे बाहर आ तां ठीक ठाक बंदा घर पहुंचूगा कि नहीं पहुंचूगा। लोकां च इक तां गर्मी गर्मी वैसे मौसम बड़ा वधिया, पर जिवें कहिंदे ना अंदरूनी गर्मी उह वी बड़ी वधी होई है वी किसे नूं कोई सहारदा ही नहीं हैगा। पता नहीं तां जैलसी है या उह अपने आप तो तंग है कि की है रीज़न की है ना इदां करदे आ, क्योंकि जिहड़े इत्थे रहिंदे आ लोक उह इमीग्रेट होके आए हुए है, जिहड़ी सरकार है उहनां नूं अनुमति दित्ती हुई है, उहनां नूं जिहड़ा पत्र पेपर प्रॉपर लगा के आए हुए है तां इत्थे पहुंचे है ना। मैक्सिमम जिहड़े लोग है उह इमीग्रेट होके आए हुए है, जिहड़े ओरिजिनल पीपल इत्थे जिवें कहिंदे आ बोरिजिनल उह तां बड़े घट है, उहनां दे तां जिहड़े सारे हक हकूमतां ने लै ले आ, ते बाकी जिहड़े बाहरों आए आ उह कहिंदे आ वी इह साडे ही आ ते जीण नहीं दिंदे दूजे लोगों, जिहड़ा कि बड़ा माड़ा रुझान है, नहीं इदा होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अपने वट्सएप ग्रुप से गुणतास ने पाया जी ये, सो हेट क्राइम जिहड़े अगेंस्ट साउथ एशियन कम्यूनिटी ब्रैम्पटन दे विच कहिंदे यह पहला नालों ज़्यादा वध गए मसले जिहड़े हेट क्राइम दे, कि कदी भी किसी नूं कुछ भी बोल दिंदे आ, कह दिंदे आ, धक्के मार दिंदे आ, जिहड़ा कि बहुत गलत रुझान लोकां दे विच आया होया। कहिंदे 2024 तों बाद इह ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ

0: 1230.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगी
1: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदो दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेवन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap।

0: भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: हाँ जी,
1: कोई एक्चुअल सर्टिफिकेट नहीं कुछ कराना,
0: नहीं बिल्कुल नहीं कराना, कोई इक्विवेलेंसी, कुछ आईलेट कुछ नहीं चाहिए इसमें,
1: कुछ भी नहीं, आईलेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए।
0: आसान कोर्सेज है, और बड़ी बात हमारे पास सिर्फ, हम सिर्फ 8 कोर्सेज में डील करते हैं,
1: 8
0: जिसमें आप पास हो जाएंगे।
1: ओके,
0: अगर आप जिद करेंगे ये वाला करना, हम पहले हाथ खड़े कर देंगे।
1: अच्छा,
0: हम ये नहीं कि आपके कहने चलेंगे, हम वही चीज करेंगे जो आपके लिए अच्छी है।
1: हाँ।
0: दवाई होती है ना, दवाई
1: वो कड़वी लगती, लेकिन हाँ।
0: कड़वी लगती है लेकिन बंदा ठीक हो जाता है।
1: ताही कहते हैं कनीन की गोली है जी, गुड़ चलपेट के दे देते हैं, ऊँ कौड़ी है पर गुड़ चलपेट के बंदा खाऊगा, गुड़ के मिठे के हिसाब से खाधी जाती है, बंदा तंदुरुस्त हो जाता।
0: बिल्कुल जी, वही चीज़ है। तो फुली ऑनलाइन है, आसान से कोर्सेज है, एग्जामिनेशन है ही नहीं, असाइनमेंट्स हैं ईजी।
1: अच्छा, एक चीज़ मैं ये देखिए भी, ये सरकार भी फिर वैसे आप, चलो आप तो देखते हैं कि ठीक है जी ग्रांट भी मिल जानी है सरकार को, भी ये आपका फायदा भी तो दिता ही होगा यार, जिन्ने बंद पढ़े लिखे हो गए स्किल्ड परसन हो गए, साढ़े को भी तो आने वाले टाइम स्किल्ड परसन चाहिए ना, अभी बाहरों मंगाने जो स्किल्ड परसन उन्होंने लिए भी उदो बैटर असं इतनी स्किल इन्हों दे दिए, तो यह जेकर स्किल्ड परसन बन जाते हैं तो नाल तो रेवन्यू भी क्रिएट करके देंगे, जॉब वधिया करेंगे, आने वाले टाइम के हम किन्ने पलंबर आ जोड़े वो चाहिए होने, आने वाले टाइम के हेल्थ सैक्टर के किन्ने चाहिए होने, अकाउंटेंट किन्ने चाहिए होने, सो सी आर वाले भी तो चाहिए होंगे, मतलब उन्होंने भी फायदा तो है भी इतों वाले बंद जे पढ़ते हैं तो इतने असं इनवैसट करके इन्होंने इन्हों बहरों सदन की बजाय असं इन्हों।
0: बिल्कुल जी, और इसमें यह भी है कि ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई के बाद उसी फील्ड में जॉब करनी है।
1: अच्छा, ये भी
0: ऐसा भी नहीं है कि आपने, मतलब कुछ इसमें कैच नहीं है, कुछ हिडन नहीं है।
1: एक एक मिनट, जे
0: अगर जॉब नहीं लगी इट्स फाइन।
1: जे मैं हुन अकाउंटेंट दा कोर्स कर लिया,
0: हाँ जी,
1: मैं कहा जी मैनू तो कोई जॉब नहीं मिलती,
0: हाँ।
1: जा मैं तो लाइक नहीं करता,
0: हाँ।
1: तो मैं ग्रांट भी ले ली, लोन भी ले, जो जे किसी बंद ने भी सीडी ने ले
0: लिया, बिल्कुल जी, हाँ।
1: तो मैं नहीं भाई करना यार, मैं
0: हाँ।
1: ठीक है, फिर उन्होंने ऐसा नहीं कहना कि नहीं हूं तू अकाउंटेंट दा ही कर, जे तू नहीं करता तू ग्रांट क्यों ली सी।
0: बिल्कुल ऐसा नहीं है,
1: उन्होंने कोई मतलब नहीं,
0: कोई मतलब नहीं ना, आपने पढ़ाई करी, आपने अटेंडेंस लगाई, आपने कोर्स कंप्लीट करा, फिनिश, ऑल गुड,
1: उन्होंने कोई मतलब नहीं, तुसी जॉब लेने हो नहीं लेंदे, मिलदी या नहीं मिलदी, करदे हो नहीं करदे, जो तुसी ट्रक चलाउंदे ट्रक चलाई जांदे,
0: उल्टा आपको जॉब नहीं मिल रही तो फैमिली ऑफ फाइव को, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते, फैमिली ऑफ फाइव में 100,000 की फंडिंग आई, 50,000 ग्रांट है, 50,000 ऑप्शनल लोन 0% पे है, जॉब ही लगी आपकी मान लिया, तो आपका जो लोन है आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपका लोन डेफर हो जाएगा 1 साल।
1: अच्छा,
0: 2 साल 3 साल बताओ।
1: अच्छा,
0: आपने लोन डेफर कराया है बैंकों से कभी? कभी नहीं करते बैंक वाले, यहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है आपको, असली कागज लग रहे हैं,
1: 3 साल तुझे नहीं देना,
0: अगर जॉब नहीं लगी कहाँ से देंगे,
1: तुझे कह सकते हो ना,
0: गवर्नमेंट आपकी मजबूरी समझती है, बैंक नहीं जो घर उठा के ले जाएगा आपका, तो इसलिए हम तो किसी और टेढ़ी मेढ़ी फंडिंग में डील ही नहीं करते जिनमें नंबर चलते हैं, सारा साफ काम है, साफ तरीके से 8 साल से कर रहे हैं, बाल सफेद धोके करते हुए, आज शुरू नहीं करा, प्रॉपर ऑफिस है, कैफे में नहीं मिलते, 1,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, 7 से 8 बंदे काम कर रहे हैं आपके लिए, ऑफिस आए, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, फीस हमारी, आपकी कमीशन कुछ नहीं है भाई साहब, कोई सेटिंग नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, तो मेरी कोई आगे सेटिंग ही नहीं है बैंक में, पैसे
1: थोड़ा लेना नहीं, कुछ
0: गवर्नमेंट की फंडिंग है,
1: हां थोड़ा तो कोई है ही नहीं,
0: हम तो कुछ, हमारे पास क्लाइंट आते हैं जरूर कहते हैं सर उसने 2500 पहले लिया, उस एजेंट ने 3500 पहले लिया,
1: थोड़ा कोई नहीं मतलब,
0: जब हमें सुनते रेट पर राइट पर रिटर्न जाते हैं,
1: हां जी 200 तो 200 लेना तुझे,
0: 199 या 499, दो फीस है डिपेंडिंग ऑन कोर्स, कोई एक कोर्स आसान है, एक कोर्स बहुत आसान है,
1: हां वो तुझे जेड़ा भी चूज
0: करोगे आप उसके
1: जेड़े तुम्हें एडमिशन मिलती है
0: अभी काम होने के बाद,
1: हां तुम्हारे को आने तो बाद, जे तुम्हें नहीं है तो नहीं देना, एक डॉलर ना दियो तुम इन्हें,
0: छूट ऐसा हमें पता आएगा इसलिए हम पैसे लेते ही नहीं पहले,
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो नंबर 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 कॉल कर लेनी।

0: चक्कर लगाओ।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: भाई कला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: मल्ली टेंट सर्विसेज तुहाडे स्पेशल इवेंट्स दे हर एक साइज दे वाटरप्रूफ टेंट्स प्रोवाइड करदे ने। 10x10 feet तो लेके 40x100 feet दे तंबू ने। टेबल्स ते कुर्सियां भी नाल लेके आउंदे ने ते तुहाडे बैकयार्ड नु बैंक्वेट हॉल वांगू बणाउंदे ने। फैंसी चेयर्स भी अवेलेबल हन, LED ग्लो इन द डार्क बनी बनाईयां बार्स, टेबल्स ते कुर्सियां भी तुसी रेंट कर सकदे हो। अज ही मल्ली टेंट सर्विसेज नु कॉल करो 647-999-2569, 647-999-2569।
5: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तुसी सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 to 6, लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी, जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नू 3 घंटे पेश हुंदा है। ते नाल तुसी दुपहरे सरडे 1 to 4 शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नू 416-457-3381, 416-457-3381, जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551, 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो 7 days a week तुहाडे अंग संग। चलो AM 530 चार